ताली ताक धुम ताक ताली ताक धुम ताक धाला आम को ताक धुम ताक ताली के नेतू ताक नाक ताक धुम ताक नाक नाक धुम ताक नाक नाक धुम ताक नाक नाक जाम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को कुदारी ता कुदारी के ने ताली धुम तारी ता जग तारी ता जाने जाने को कुदारी ता कुदारी के जाम तार

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पे देश भर में सुनाई देता है, तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

0: एक चीज के लिए एक आदमी अमूल्य हो जाते हैं, जिसकी मोल नहीं, तोड़ मोल नहीं होती, और ये चीज हमेशा खुदा के घर से आता है। वो चीज थी मुकेश की आवाज की टिम्बर, जिसका वो धनी था। वो टिम्बर किसी की आवाज में मुझे और सुनाई नहीं दी।
1: भाई और बहनों, ये है मेरी जिंदगी का पहला गाना।

नाशा दीवानी थी वो, याद चिश्ती पाक में बर्बाद दीवानी थी वो। मुंह छुपा कर एक गोशे में सदा देती थी वो, गोद फैल

इन्होंने हम पर जो ऋण चढ़ा दिए हैं उनसे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। कपि से उऋण हम नाहीं, भरत भाई

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करती।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहे लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

ब्रह्म संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

दिल को मैंने दी कसम की न धड़के कभी तेरे बिना। अमाल मालिक, हाँ अमाल मालिक और अरिजीत सिंह की आवाजों में आप गीत को सुने। उजाला रेडियो है ये।

मैं ना मिलूंगी, नजर हटा लो। लता जी की आवाज में इस गीत को आप सुने और फिल्म का नाम प्यार का मौसम, फिल्म प्यार का मौसम का गीत उजाला रेडियो पर। और अब किशोर कुमार के साथ लता जी, फिल्म जोशीला का गीत।

उजाला रेडियो का प्रोग्राम जो आप लोग सुन रहे हैं, हमारे प्यार सुनने वालों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम, नमस्ते और आदाब। हमेशा की तरह जिनके घर पर कोई भी खुशियां, जन्मदिन, सालगिरह, विवाह, शादी हो, आप को हार्दिक से बधाई और तहे दिल से मुबारकबाद अर्ज की जाते हैं। जो कोई बीमार या तो लाचार है तो उनकी तंदुरुस्ती के लिए भगवान से प्रार्थना, अल्लाह से दुआ है आप की ताकत और तंदुरुस्ती के लिए। मैं हूं सुभाष और जहां तक मेरी आवाज पहुंची वहां तक हम आप सभी को बहुत ही प्यार से, दुलार से, दिलो जान से स्वागत कर रहा हूं अपनी ही प्रोग्राम में। उजाला रेडियो का दफ्तर का फोन का नंबर है 020-409-0807 या तो हमारा वेबसाइट पर आप जाइए www.ujala.nl या तो info@ujala.nl पर हर एक जानकारी आपको मिल सकेगा। हमारे प्यार सुनो, आज का प्रोग्राम में कुछ मिलजुल संगीत से हम आप सभी को फिर से खिदमत करने वाला हूं और आशा है कि आज का प्रोग्राम भी आप लोगों को पसंद भी आएगा।

फिल्म का नाम राम तेरी गंगा मैली और लता और सुरेश वरकर जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे। एक्चुअली इस बार फिल्म का नाम होंगे मैंने प्यार किया, एसपी बालसुब्रमण्यम।

वेल यार मेरे मेरे सवालों का जवाब दो ना। और इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने एसपी सुब्रमण्यम की आवाज में, एसपी बालसुब्रमण्यम यार उन्हीं की आवाज में गाना जो प्रोग्राम में

0: वाओ बल यार तेरा जैसा यार कहाँ, तेरा जैसा यार आना कहाँ। अब इस तरह से गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुने किशोर कुमार जी के आवाज में। और चलिए यहां पर गाना सुन।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

बल ये कहा हम आगे यूं ही साथ चलते चलते। अब बोले कि बता दे यार कि हाँ हमें मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है, इधर भी है उधर भी है। और इस तरह से लता एंड अमिताभ बच्चन जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुने, फिल्म का नाम सिलसिला। चलिए अब की बार हमारे प्यारे श्रोता लोग आशा जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में आप लोग सुनेंगे, फिल्म का नाम उमराव जान।

वाओ वेल यार, इन आंखों की मस्ती में लाखों लाखों हजारों और है। और इस तरह से आशा जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे यार, उजाला रेडियो का प्रोग्राम है। आप सभी को आशा है कि ये प्रोग्राम हम बना रहे हैं आप लोगों को पसंद भी आते होंगे। एसपी बालसुमानियम एंड अनुराधा पौलवल जी के आवाज में

0: भूल गए
1: जानी मेरा नाम
0: अच्छा
1: चोरी मेरा काम जानी मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडलबाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: चार का मौसम
0: बेशरम

अरे यार मेरे जीवन साथी नॉटी बॉय अस्मी बालसुमनियम एन अनुराधा पौलवल जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे यार युवार उजाला रेडियो का प्रोग्राम। चलिए इस बार हमारे प्यारे सुनने वालों अमित कुमार जी के आवाज में तू तक तूतिया एंड आई लव यू यार।

वेल तू तक तूतियां आई लव यू। और इस तरह से अमित कुमार जी के आवाज में गाना जो प्रोग्राम में भी आप लोग सुन रहे थे हमारे प्यारे सुनवलो और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है यार। हमारा दफ्तर का फोन का नंबर है हमारे प्यारे सुनवलो 0 3 0 9 0 7 पर आप लोग तार कर सके हैं।

और उजाला रेडियो का प्रोग्राम है बैनी दया एंड श्रेया घोषाल। इन दोनों से आप सुने फिल्म गजनी का गीत, और अब हिस्सा लेंगे एक बार फिर श्रेया घोषाल मर्दान सोनू निगम के साथ।

और तूने तो पल भर में चोरी किया रे मोराजिया, पल भर में चोरी किया मोराजिया। सोनू निगम एंड श्रेया घोषाल, इन दोनों से आप सुनिए फिल्म दबंग का गीत है। दबंग एंड दन नोख अंकेर श्रेया घोषाल जावेद अली के साथ।

भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर सुनमल और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको ये नहमा सुनाने गुजार है सच्चे माता दिन के वास में सच्चे माता दिन ook aanwezig op Ujala's Diwali Festival of Lights zondag 1 november to kartwana kilimarte to jaldise kille geen staspaskorting kaarten vanaf €15 via meervaart

चलिए प्रोग्राम में हम आपको सुनाते हैं ये नहमा और ये गाना है आका याग्निक एंड मोहम्मद अजीज के आवाज में। फिल्म का नाम आदमी खिलौना है। पेश किया जा रहा है प्रोग्राम में ये नहमा।

उजाला रेडियो आपकी आवाज, आपके गीत और संगीत, आपका मन प्रिय रेडियो स्टेशन, ये सब मिलाकर बनती है उजाला रेडियो।

उजाला ला रहे हैं जोंदा 1 नवंबर को जबरदस्त दिवाली कॉन्सर्ट और फकल ऑफ तो आपके लिए लाइव ऑन स्टेज रविंद्र सिंह बेदी मैट आविष्कार ऑर्केस्ट्रा टिकट वक्त पे आप खरीद लेना geen staspas korting टिकट दाम vanaf €15 koop je tickets via meervaart.nl

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नार info@ujala.net। Ujala Diwali Festival of Lights, zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust concert en natuurlijk vanaf 2:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee, Jabberjust concert hoorde wel hij. Aur fakkeloptocht Shurhonge, Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights met Satyam Matadim uit Suriname, Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht per grillen via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting.

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

चलिए हम आपको ये नामा सुनाते हैं एंड इंटरेस्ट वक्त को अपने नतुलक आनंद चंद्रिका सिंह जिसे हम बात करने वाले हैं नतुलक आज के समाचार के बारे में या आने वाले दिनों के बारे में मार मिशन अंदर अंदर ओनर वेरब जो हम लोग लाने वाले हैं उजाला रेडियो पर.

भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर सुनमल और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको ये नहमा सुनाने गुजार है सच्चे माता दिन के वास में सच्चे माता दिन ook aanwezig op Ujala's Diwali Festival of Lights zondag 1 november to kartwana kilimarte to jaldise kille geen staspaskorting kaarten vanaf €15 via meervaart

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

गमी है पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टर्डम जोयतो स्ट्रांड फ्लीट से श्रीमान मंगरू शिवपाल और सभी लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते शनिचर को 75 साल की आयु में क्वेफन जेफन तखियार और पति श्रीमान मंगरू शिवपाल की पत्नी लड़कन शर्मिला विनोद रजेश और संजय शिवपाल की मां दो पतो रविता शिवपाल वृंदावन पांडे और नाताशा शिवपाल राम अवतार के सास शेरवेल रहान स्टेफानो अनिशा मलेसा शैली संजय रायन शयन राजा अयाना अरासेली एंजल अवानी औरोरा आर्यन प्रिंस और आर्या के नानी और आजी शजाना रिफानो जिलानी इजाज लेफी शेरानो और सफीना के परनानी और पर आजी आम्स्टर्डम जोयतो स्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी शिवपाल श्री की मृत्यु आम्स्टर्डम ओस्ट में हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। आम्स्टर्डम जोयतो स्ट्रांड फ्लीट से श्रीमान मंगरू शिवपाल और सभी लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 75 साल की आयु में क्वेफन जेफन तखियार औत पति श्रीमान मंगरू शिवपाल की पत्नी लड़कन शर्मिला विनोद रजेश और संजय शिवपाल की मां दो पतो रविता शिवपाल वृंदावन पांडे और नाताशा शिवपाल राम अवतार के सास शेरवेल रहान स्टेफानो अनिशा मलेसा शैली संजय रायन शयन राजा अयाना अरासेली एंजल अवानी औरोरा आर्यन प्रिंस और आर्या के नानी और आजी शाजाना रिफानो जिलानी इजाज लेफी शेरानो और सफीना के परनानी और पर आजी आम्स्टर्डम जोयतो स्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी शिवपाल श्री की मृत्यु हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी के दाह क्रिया और साथ में विदाई लेने के मौका कल शुक्रवार के सुबह 10 से 11:30 तक मोरखनोक्तन फंती न्यूर्तो 12:12 क्रेमेटोरियम वेस्टगार्डन ओक मेरवेग 275-275 आम्स्टर्डम ओस्टडोर्प में।

0: था।
1: और मृत्यु समाचार आप सुनिए, क्रोमनी से बेटी शर्मिला सेवपाल और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 75 साल की आयु में फेफन जेफन तखियार और बेटी शर्मिला सेवपाल की माँ शेरवेल शेली और राजा मोहम्मद हुसैन की नानी रहान गफार और संजय नंदलाल की ननिया सास शहजाना जिलानी एजाज गफार और शेरानो और सफीना नंदलाल के परनानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी शिवपाल श्री की मृत्यु अम्स्टरडम ओस्ट में हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। क्रोमनी से परिवार शर्मिला शिवपाल बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते शनिचर को 75 साल की आयु में फेफन जेफन तखियार और बेटी शर्मिला शिवपाल की माँ शेरवेल शेली और राजा मोहम्मद हुसैन की नानी रहान गफार और संजय नंदलाल की ननिया सास शहजाना जिलानी और इजाज गफार और शेरानो और सफीना नंदलाल की परनानी अम्स्टरडम ज़ुइटोस की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी शिवपाल श्री की मृत्यु हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका और भी दाह क्रिया कल शुक्रवार के सुबह 10 से 11:30 बजे तक किए जाएंगे। मोरखनोख्तन फन 3 uur tot 11:30 वेस्खाड़े क्रीमाटोरियम ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में।

0: गोदान
1: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में और मृत्यु समाचार को आप सुनिए। अम्स्टरडम से बेटा विनोद सेवपाल और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 75 साल के आयु में फेफड़ों से फेफड़ों तक यार और बेटा विनोद सेवपाल की माँ रायन और शयन सेवपाल के आजी अरिफानो सेवपाल के पर आजी अम्स्टरडम जोयतो स्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु अम्स्टरडम ओस्ट में हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अम्स्टरडम से बेटा विनोद सेवपाल और लड़कन बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे है कि बीते हुए शनिचर को 75 साल की आयु में फेफड़ों से फेफड़ों तक यार और बेटा विनोद सेवपाल की माँ रायन और शयन सेवपाल के आजी रिफानो सेवपाल के पर आजी अम्स्टरडम जोयतो स्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु हो गई है। बेया के नाम से लोग इन्हें पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका और अर्थी के दाह क्रिया कल शुक्रवार के सुबह 10 से 11:30 बजे तक किए जाएंगे। मोरखन फ्रेडाख फन 3 tot 11:30। क्रेमेटोरियम वेस्टगार्डे ओक मेरवेग 272 अम्स्टरडम ओस्टडोर्प में।

और मृत्यु समाचार को आप सुनिए, लेलिस्तान से बेटा राजेश सेवपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए शनिचर को 75 साल के आयु में फैफन सैफन तखियार और बेटा राजेश सेवपाल की मां पतो रविता सेवपाल वृंदावन पांडे के सास स्टेफानो अनिशा मलेसा अयाना अरासेली अवानी औरोरा आर्यन और आर्या के आजी लेफी के पर आजी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु हो गई है। बिया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। लेलिस्तान से बेटा राजेश सेवपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए सन पांडे के सास स्टेफानो अनिशा मलेसा अयाना अरासेली अवानी औरोरा आर्यन और आर्या के आजी लेफी के पर आजी अम्स्टरडम ज़ुइटोस्ट्रांड फ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु हो गई है। बिया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। लेलिस्तान से बेटा राजेश सेवपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं।

Lima, Petor Revita Seupal, Brindaban, Pandi, Kisas, Stefano, Anisha, Melissa, Ayana, Araceli, Avani, Aurora, Arian और आरिया के आजी लीफी की पर आजी अम्स्टरडम जोयतोस की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु हो गई है अम्स्टरडम ओस्ट में और इन्हें लोग बेया के नाम से पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका और भी दाह क्रिया कल सुबह किए जाएंगे। कल शुक्रवार के सुबह 10 से 11:30 बजे तक मोरखनोक्तन फन 3 उर तक 11:30 क्रीमेटोरियम वेस्टगार्डे ओक मेरवेग 275 अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में।

और एक और मृत्यु समाचार को प्रोग्राम में आप सुनिए। वूर्दन से बेटा स्टीव सेवपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 75 साल की आयु में वैफन जैफन तक यार औत बेटा स्टीव सेवपाल की मां पतो नाताशा सेवपाल राम अवतार के सास एंजल सेवपाल और प्रिंस सेवपाल के आजी आम्स्टरडम जैतो स्ट्रैंडफ्लीट की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु हो गई है आम्स्टरडम ओस में, और इन्हें लोग बेया के नाम से पहचानते और पुकारते थे। वूर्दन से बेटा स्टीव सेवपाल और परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं कि बीते हुए शनिचर को 75 साल की आयु में फैफन सेफन तक यार औद बेटा स्टीव सेवपाल की मां पतो नाताशा सेवपाल राम अवतार के सास एंजल और प्रिंस सेवपाल के आजी आम्स्टरडम जैतोस की रहने वाली श्रीमती सुशीला देवी सेवपाल श्री की मृत्यु हो गई है। बेया के नाम से लोग पहचानते और पुकारते थे। अर्थी से विदाई लेने के मौका और साथ में दाह क्रिया कल सुबह किए जाएंगे 10 से 11:30 बजे तक मोरखन फ्रेदन फान तीन ट्वेल्व वैसखांड क्रिमाटोरियम ओक मेर वैग 275 आम्स्टरडम ओस्टडोर्प में। और जानकारी के लिए तार का नंबर है 020-699-5337। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो समस्त परिवार शिवपाल के दुख में शामिल है।

उजाला ला रहे हैं सोमवार 1 नवंबर को जबरदस्त दिवाली कॉन्सर्ट और फाकल ऑफ तो आपके लिए लाइव ऑन स्टेज रविंद्र सिंह बेदी मैथ आविष्कार ऑर्केस्ट्रा टिकट वक्त पे आप खरीद लेना geen staspas korting टिकट दाम vanaf €15 koop je tickets via meervaart.nl

6:07 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बृहस्पतिवार है, गुरुवार है, 2 अक्टूबर, और अब से करीबन रात्रि में 11 बजे तक आपका सेवा हम करेंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रोहतांग से। प्रोग्राम फिर एक बार बनाया जाएगा, सजाया जाएगा और स्टूडियो रोहतांग से मैं रतन राम दुलारे पांडे आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब से। 3 घंटे का ये प्रोग्राम में कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स के साथ साथ दर्द भरे नगमाएं, आखिरी घंटे में कुछ से ज्यादा ही पुराने नगमाएं आपको हम सुनाएंगे और पहले 2 घंटे में हम कुछ द 90s मिलेनियम के बाद जो रिलीज हुए हैं और द 80s का कुछ हसीन हसीन तोहफे, खूबसूरत यादगार म्यूजिक आप तक हम पेश करेंगे। और ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनवालों 9 3 9 0 9 0 पर आप अवश्य भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पर भी कुछ बातें हम कर सकते हैं। और रहे दफ्तर की कार्रवाई, तो मेरे प्यारे सुनवालों सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे आप अवश्य तार करिए 9 3 4 0 9 0 7 या तो किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी पल जब भी आपको उजाला रेडियो का जरूरत पड़े, फरमाइश है, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, किसी भी प्रकार का जानकारी इंफॉर्मेशन, तो आप मेल करें info@ujala.nl। आज का ओपनिंग सिलेक्शन मेरे प्यारे सुनने वालों जावेद अख्तर जी का लिखा हुआ एक खूबसूरत गीत है, पॉपुलर सॉन्ग है जो किशोर कुमार गाकर सुनाएंगे, कि चेहरा है या चांद खिला है, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तू जरा बता तेरा नाम है क्या।

अरे तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजर में जम जाए, अनवारों तूने दीवाना इस दिल को बनाया, अब इस दिल पर इल्जाम है क्या। सागर जैसी आंखों वाली ये तो जरा बता कि तेरा नाम है क्या। लाजवाब बेमिसाल नगमा जिसकी अल्फाजी इतनी खूबसूरत है, जिनकी इनकी कविताएं, जावेद अख्तर जी महान राइटर, और इनका ये खूबसूरत नगमा आज हमने ये प्रोग्राम दिल की आवाज का आराम किया है। किशोर कुमार की खूबसूरत आवाज ऑफ कोर्स, और सागर फिल्म का नगमा। मेरे प्यारे सुनोलो, फिर एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं आप सभी को। 16 मिनटों ऑफ द क्लॉक फन, 8:16 गुजर चुके हैं, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं। यूआर के स्टूडियो रोटरडम से प्रोग्राम बनाया जा रहा है और बहुत सारे ऐप्स आए सिर्फ एक गीत के अंदर में, तो मतलब ये कि आप साथ दे रहे हैं, तो उसके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू लिवा देव खोली जी, इनका लिखा हुआ चलो एक रोमांटिक सॉन्ग सुनाते हैं। ये एक डुएट सॉन्ग है जो द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू और अलका याग्निक मिलकर गाएंगे, कि ओ मैं तेरा तुम मेरे हो पेश करता हूं।

करना है, जो होता है बस होने दो। देवखोली जी इनका लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग द टाइगर कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें, राम शास्त्र फिल्म का नाम। हर एक जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते मेरे प्यारे सुनने वालों, उजाला रेडियो का वेबसाइट www.ujala.nl और चेक ऑन सोशल्स तू जाने था। अगले गीत महबूब साहब जी का लिखा हुआ एक नगमा है जिसका बोल है, कहते हैं जिसको मोहब्बत वो हो तुम, रब ने बनाया जिसे दिल से वो है तुम, हुस्न ये गजब का अदाएं है कातिल, जैसे कयामत की लुट लुट ही गया है दिल। आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत अल्फाजे हैं महबूब जी का लिखा हुआ। तो चलो ये नगमा को आपको हम सुनाते हैं, अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाजों में।

कुछ हुआ है कुछ हुआ क्या पता, चोरी चोरी चुपके चुपके आके ले चले कहां मुझे उड़ के, जानम तेरे दिल को चुरा के ले जाएंगे सीने से लगा के, मैं तेरी तू मेरे हो आशिकी का ये सम

तेरे नाम से होती है सुबह, ये सुबह आवारा, और तेरे नाम से होती है शामे आवारा। दिन भर तेरा ख्याल तेरे ख्वाबों रातों में, तेरा पागलपन है मुझ पर जाने मन, इतना प्यार करता हूं कि तेरा पागलपन है मुझ पर जाने मन। तो कहते हैं जिसको मोहब्बत वो ही है तुम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। महबूब जी का लिखा हुआ ये नगमा फ्रॉम द मूवी ग्रहण, अभिजीत भट्टाचार्य और कविता कृष्णमूर्ति जी की खूबसूरत आवाजें। रोमांटिक सॉन्ग सुना रहे हैं, तो चलो एक और। अब की बार महान कवि, सॉन्ग राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर गुलजार साहब जी का लिखा हुआ गीत। गुलजार साहब जी बहुत सारी उस हसीन हसीन कविताएं और हसीन हसीन नज़में ये लिखा करते हैं, तो इनका शेर भी बहुत खूबसूरत है। तो कोशिश करता हूं रोजाना एक इनका लिखा हुआ पढ़ने का। फिलहाल तो इनका लिखा हुआ एक बहुत ही पॉपुलर और खूबसूरत सॉन्ग जो आप यकीनन पसंद करेंगे, संगीत की देवी लता जी और सुरों का बादशाह लेजेंड पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाजें, ये नगमा।

लबों से अगर तुम बुलाना सको तो निगाहों से तुम नाम लेकर बुला लो, क्योंकि तुम्हारी ये निगाहें बहुत बोलती है। जरा तो अपनी आंखों पे पलके ये पलके जो है गिरा दो, क्योंकि मुझे तो पता चल गया है कि मेरी मंजिल कहाँ है। अब चलो दिल की ये लंबे सफर पे चलो हम चलें, और ये सफर जब खत्म हम कर देंगे वहीं पर जहां तक तुम्हारे ये कदम भी ले चलेंगे। मोये फिल्में हम देखते हैं, बहुत प्यार होते हैं, प्यार भरे गाना लोग गाते हैं इंडिया के स्वर्ण पार्क में ऑफ आम्स्टरडम से बॉस नयानी, इतना खूबसूरत लगे हम लोगों, इतना बॉलीवुड फिल्म हम लोगों ने देखी ला, मैं अब भी हम ना देख ली कोई के ऐसे पार्क वारक में एक्ट में है ना, कि एगो वीडियो क्लिप खाते एक्ट में ऐसे अपन प्रेमिका लेके मोई गाना मिलकर गावे नाचे कूदे। Dat zou mooi zijn als wij ook die gewoonte hadden. Je hebt Gulzar Saheb ji ka likha hua ek khoobsurat romantic song. Aur sangeet ki devi Lata ji aur Mohammad Rafi Saheb ji ki awaazein. Swayamvar film ka naam. Ja, assalamu alaikum. Wees, agar aisa hota dan weet ik een paar mensen. Ook van hier van UR. Ik zie Loital. ऐसे धौरे अपने सुल्फे हैं ऐसे ना लॉयड के सुल्फे ना है एनिक्सी महेंद्र हो लेकर ऐसे बाइसिकल पर चलाए के ऐसे अपन फ्रेंड के आगे पीछे ऐसे घुमाए घुमाए के गाना गावे क्या वरम है बोए दी गवोंटस नीत दैट सॉर्ट गवोंटस Jammer, echt jammer. Als iedereen het zou doen, zou ik het ook doen. Echt waar. Geet Samir Kalika Hua Alka Yagnik or Sunu Nikam Pek Ko Pesh Karta Hoon. Ey Dil Ye Bata Kyun Hone Laga Ek Dard Zine Mein Aur Aane Laga Kyun Maza Ab Mujhe Jine Mein

दीवानापन ऐसा मुझ पे छाया है, लम्हा लम्हा एक बेचैनी लाया है, और कुछ खोकर भी मैंने तो सब कुछ पाया है। क्यों महके समा क्यों छाया है नशा शबनम के पीने से, और आने लगा मुझे क्यों अब मजा जीने में। ये प्यार है या फिर कुछ और है, अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजें, और ये था समीर का लिखा हुआ एक खूबसूरत गीत फ्रॉम द मूवी जूली। या मैं से अभी जो हमने जिक्र किया है अच्छोतुखवत्सेन, दिल की आवाज में हमारे दिलों में इतने सारे बातें हैं, और बातें बहुत सारे हम छुपाए छुपाए रखते हैं। इसे निकाल कर दिमाग में ले जाओ, जुबान पर ले आओ। कुछ बातें हैं दिल में नहीं रखना चाहिए, दिल की बात हमेशा कह देना चाहिए। एनाल सत्कन अपन हेल मोय रोमांटिस मनीर गाना गाकर, क्योंकि सभी एक कन्वेन में से नीनित फॉर म्यूजिक हॉर सभी संगीत को पसंद करते हैं, तो हमें जो भी करना है गा गा कर बताना है। हम मोय सौरत से एक कुमडारं के रूप तुरु कि कितना मोय लगे अगर तू संगीत में किसी से बतिया सके, लेकिन संगीत में भी जवाब आना चाहिए। हाँ, मैं ले चलता हूं इंदवर साहब जी का लिखा हुआ एक खूबसूरत गीत, रोमांटिक सॉन्ग इनका लिखा हुआ, बहुत सारे नगमाएं अमर है और यकीनन ये भी। और मैं गीत जो है मैं देखता हूं बप्पी लहरी और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे।

Yau Jala Radio, Ujala Radio, Feel the Rhythm. उजाला पेश कर रहे हैं उजाला दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोमदा 8 नवंबर इन मेरवार मैं संजय जोधा मौसमी रॉय इंद्रनील रॉय रविंद्र सिंह बेदी एंड म्यूजिकल बखलाइनी इस हाल वाम आविष्कार ऑर्केस्ट्रा प्रेजेंटेशन जया चंद्रिका सिंह एंड सुधीर ननन जोमदा 8 नवंबर टिकट वक्त पे खरीद लेना और प्रोग्राम शुरू होने वाला है फ्रॉम 2:30 रात 8:30 फकल ऑफ टॉक के साथ हैव एन जबरदस्त कॉन्सर्ट तोर खातिर टिकट्स फ्रॉम €15 वक्त पे खरीद लेना via meervaart.nl Samen ontsteken we niet alleen lampjes, maar ook onze harten. Vier het mee, straal mee.

आंखों आंखों तुमने ये क्या कहा, दिल ने ये क्या सुन लिया, मैं तुम्हें क्या कहूं ये मुझे नहीं है पता। अली शहजाद जी का लिखा हुआ गीत फिरदौस, राजन की आवाज। ब्यूटीफुल एल्बम है ये, राजन्स एल्बम से निकालकर आज मैंने ये गीत आप तक पेश किया है। 9:11 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये, दिल की आवाज आप सुन रहे हैं एकदम लाइव एंड RIQR के स्टूडियो रतनाम से। आपका यारों का यार हूं रतन राम दुलारे पांडे, और दिल की आवाज आज पेश कर रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों। आज रात्रि में 11 बजे तक आपका साथ हम देंगे, और मत भूलिए आने वाले शनिवार 10 तारीख को भी सेवा में हम हाजिर रहेंगे लेकर प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर, और वो भी रात्रि में 7 बजे से टिल मिडनाइट, हाँ 12 बजे रात्रि तक। और अगर मृत्यु समाचार, मौत की खबरें रहा 7 बजे के इश्तिहारों के बाद, तो उन खबरों के बाद हम अपना प्रोग्राम को आराम करेंगे। ये जमीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, अगर तेरा चेहरा नजर आए तो। समीर ने लिखा और अपनी खूबसूरत आवाज में अटन सामी खान ने गाए हैं गीत।

इजाजत दे अगर तुझसे थोड़ा प्यार मैं कर लूं, मेरी जाने जा बैठ मेरे सामने, खाली दिल खाली नजर भर लूं तू मेरी जाने जा। तू अगर कह दे मुझे चांद भी ले आऊं जाने जा, एक तारा मांग ले आसमान ले आऊं तेरे लिए जाने जा। क्या बात है, इतना प्यार। ओ बॉय ओ बॉय, समीर का लिखा हुआ ये खूबसूरत अल्फाज़े प्यार भरा, और अदनान सामी खान ने गीत को गाए हैं फ्रॉम द एल्बम तेरे या तेरा चेहरा। हाँ जी, कैटरीना एट एम्स्टर्डम, डंके वेल आपके ऐप के लिए कैटरीना फैन डाजाफ खस्तम बेन। और आरआरएम में, आरएनएम शहर में शारदा भी प्रोग्राम से जुड़े हुए सुन रहे हैं, बहुत बहुत डंके वेल आपको भी। सुशीला चंद्रिका और अदनान सामी खान ने गीत को गाए हैं फ्रॉम द एल्बम तेरे या तेरा चेहरा। हाँ जी, कैटरीना एट एम्स्टर्डम, डंके वेल आपके ऐप के लिए कैटरीना फैन डाजाफ खस्तम बेन। और आरआरएम में, आरएनएम शहर में

प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और मजा ले रहे हैं दिन हाँ शहर में लीफ मिक जी दिन हल्दर शहर का इल्स रामदयाल भी चुन किए हुए हैं युवा उजाला रेडियो पर और मार्स ब्रुक का हेर एंड्रू और चित्रा जी भी आनंद ले रहे हैं दिल की आवाज के साथ मफराव एंड मनेर बिहारी अद्ब्रीदा भी चुन किए हुए हैं और अम्सदाम का आईफी जहांगीर टंकुली आलमालवेल बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सभी के ऐप के लिए चुन करने के लिए साथ देने के लिए मैं अगले गीत की ओर आपको ले चलते हैं फिल्म तो बाद में हम बताएंगे लेकिन फिलहाल तो समीर का ये भी एक लिखा हुआ नगमा है जो अलका याग्निक और उदित नारायण मिलकर गीत गाएंगे

पहली मोहब्बत का एहसास है ये, और कैसे बताऊं कि ये क्या प्यास है ये, क्यों तड़पने लगा और क्यों धड़कने लगा, कोई सपना मेरा दिल सजोने लगा, तो जरूर से जरूर कुछ होने लगा। लेकिन पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरा ये हाल, हमारी नींद गई और मेरा चैन जो है भी हमने खोने लगा, तो जरूर से जरूर कुछ होने लगा। समीर ने लिखा है मेरे प्यारे सुनने वालों, द नेम दैट स्पेल्स मैजिक, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, बागबान फिल्म का नाम। निर्मला जी अतल्फना नारायण डंकी वेल, आपके लिए बहुत बहुत डंकी वेल, धन्यवाद।

ओ बॉय, हमारा एक फेवरेट सॉन्ग पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी इसे पसंद करेंगे। एक रोमांटिक सॉन्ग है जरूर, और महान सॉन्ग राइटर कवि इंदवर साहब जी के कलम से लिखा गया है। नगमा गाएंगे संगीत की देवी लता मंगेशकर जी और हसीनों के पुजारी किशोर कुमार।

संग प्रीत लगाई सजना, वो सजना हो रामा। खूबसूरत प्यार भरा ये रोमांटिक सॉन्ग इंद्रवर साहब जी का लिखा हुआ, जो हसीनों के पुजारी किशोर कुमार और संगीत की देवी लता जी ने मिलकर गाए हैं। फिल्म का नाम काम चोर। मेरे प्यारे सुनने वालों, रोहिणी कल्लू जी आयत रोटरडम डंकेवेल आपके एप के लिए एंजॉय। फैज अनवर का लिखा हुआ गीत पेश करने जा रहा हूं मेरे प्यारे सुनने वालों, और कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें कि अजब हो तुम जो लेते हो जुबा का काम नजर से

नजर में कैद करके सनम तुम्हें ले जाएंगे जानम, बहुत दिन जी लिए तन्हा ना अप जी पाएंगे कसम से, हो ना जाने लोग क्या समझते हैं नजर की बात क्या है आखिर, अजब हो तुम जो लेते हो जुबा का काम नजर से नजर से। ये रोमांटिक सॉन्ग फाइज अनवर जी का लिखा हुआ, मिलकर गीत गाए हैं अलका याग्निक और कुमार सानू, राम और श्याम फिल्म का नाम। इवन एट द क्लॉक क्या एक और, तो सरे 9:11 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, 11 ओवर हाफ टीम। रोमांटिक सॉन्ग की ओर आपको ले चलते हैं और रोमांटिक सॉन्ग Even spieken wie dat heeft geschreven. Indwar Sahib ji ne likha. Aaj hi pesh karne ja raha hu. Ki mohabbat ki nazre karam chahta hu. Jagah tera dil mein sanam chahta hu. Honge diwane teri hazaron lekin kaha main kisi se kam hu ye batao. गीत मिलकर गाएंगे मेरे प्यारे सुनने वालों विनोद राठौर और कविता कृष्ण मूर्ति जी। दिल की आवाज है ये, यूआर पर लाइव एंड डायरेक्ट प्रोग्राम पेश हो रहे हैं स्टूडियो रतनाम से।

चलते चलते इन राहों पर ऐसा भी कुछ हो जाता है, कोई अनचाहा मिल जाता है और मनचाहा खो जाता है। क्या सोच कर करता है इंसान और क्या जाने क्या हो जाता है। ये डट भरा गीत प्रभात ठाकुर जी का लिखा हुआ किशोर कुमार की आवाज में हमने आप तक पेश किया है आत्माराम फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनो एक आखिरी गीत, इस गीत के बाद ब्रेक और ब्रेक के उस पार थोड़ा सा पुराना नगमाएं सेवा में पेश करेंगे। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ, रफी साहब जी का गाया हुआ ये नगमा से इस घंटे को हम समापित करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

सपनों का ये शहर हम बनाएंगे घर, और पल भर में ये बना और ये गिरा। घर को बना, डर को सजा, किसके लिए मैं हूं खड़ा, तुम बेखबर, मैं हूं मगर तन्हा परा पत्थर की ये घर। तुम नहीं तो कुछ भी नहीं, सपनों का ये शहर बनाएंगे घर। डट भरे गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, रविंद्र पीपत जी का लिखा हुआ, और अपने खूबसूरत डट भरी आवाज में हसीनों के पुजारी किशोर कुमार ने गीत को गाकर सुनाया। फिल्म का नाम एहसास। और घड़ी की तरफ मैं देखू, यहाँ फिर 3 मिनट हो फॉर द क्लॉक फन, 3:14 गुजर चुके हैं, 10:11 तक आपका साथ हम देंगे, लेकर ये प्रोग्राम दिल की आवाज, डर भरा एक और पॉपुलर सॉन्ग आप तक पेश कर रहा हूं। डर भरे गीतों में एक ऐसा गीत है ये कि फिल्म फेयर अवार्ड नॉमिनी भी थे और जीता भी। द ग्रेट हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ एक नगमा है, और द लेजेंड पटमाश्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज़।

कल तेरी जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे, मैं तो कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी, सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोके में तुझको बिठाकर और यादों को मैं तेरी दुल्हन बनाकर रखूंगा। मैं दिल के पास मेरी जान मत हो उदास। हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ ये ग्रेट सॉन्ग, डर भरा गीत रफी साहब जी ने गाकर सुनाए। एक फिल्म फेयर अवार्ड जीता हुआ नगमा आप तक हमने पेश किया है। जिसे सिवा मेरे प्यारे सुनवालों, 8 मिनट बाकी हैं सरे 10 बजने में और बारिश हो रही है, तो मैं सोचता हूं जब बारिश हो रहे हैं तो क्यों ना एक ऐसा नगमा पेश किया जाए प्यार भरा, जो इस रात्रि में सूट करते हैं। मैं देखता हूं गीत गाने वाले हैं लता जी और किशोर कुमार, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ।

आ तुझको आंखों में छुपा लूं इस रात में, और कजरा गजरा बह जाए गारी बरसात में। होश में से सनम, होश से काम लो, राम का नाम लो तो थाम लो। जाने बैरन रुत क्या करे, और रिमझिन मेरी तन पर ये पानी गिरे, मन में लगे बस आग सी। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गोल्डन ओल्डी रोमांटिक सॉन्ग, संगीत की देवी स्वयं सरस्वती माँ लता जी की आवाज, और हसीनों का बादशाह, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज, जैसे को तैसे फिल्म का नाम। लक्ष्मण जी आयत स्खीवनिंग डंग के वाला आपके आपके लिए, लक्ष्मण जी आपने चुन किए हुए बेहद खुशी है हम, और आप तो जानते हैं लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है। एक गीत आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और मैं पेश करने जा रहा हूं। अब की बार लता जी अकेले ही गाएंगे, और ये नगमा डट भरे गीत में गिना जाता है और फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता है। पेश करता हूं

चलिए हम आपको ये नामा सुनाते हैं एंड इंटरेस्ट वक्त को अपने तुलक आनंद चंद्रिका सिंह जिसे हम बात करने वाले हैं नतुलक आज के समाचार के बारे में या आने वाले दिनों के बारे में मार मिशन अंदर अंदर वेरब अंदर ओनर वेरब जो हम लोग लाने वाले हैं उजाला रेडियो पर.

सयार नहमा भी आपने सुने हैं उजाला रेडियो पर सुनमला और उजाला रेडियो के जरिए हम आपको ये नहमा सुनाने गुजार हैं सच्चे माता दिन के वास में सच्चे माता दिन ओक अवेजिंग ऑफ उजालास दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट ज़ोंडा 1 नवंबर तू कर्तव्य किले बाटे तू जल्दी से किले गेन स्टार्स पास कोटिंग कार्टन वन 15 €.

उजाला रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियांदेवी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहक द बेस्ट उजाला रेडियो